0: दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4।

0: हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।
2: आशना अपनी हकीकत से हो ए दहकान जरा, दाना तू खेती भी तू बारां भी तू हासिल भी तू। आह किसकी जुस्तजू आवारा रखती है तुझे, राह तू रहरो भी तू रहबर भी तू मंजिल भी तू।

अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
0: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
1: सुनते रहो GFM 90.4।

0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लॻे थी, हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओ गिलो। पेश आहे वाइट एश ब्यूटी क्रीम, अव्हां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अव्हां खे रेडियंट लुक, रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट। हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं। बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एश ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप। वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गी सां गॾु। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: कलमा पढ़ो से एक धीरा दीहर पढ़न बियाए बल बल पढ़न दे यार सजन दी हूं दिसा को जुदाई मुस्लिम विचों का फरती वन ए केरी हूं दी अदाई यार मुस्तफा जैसी जीवे एरी करें न अंधाई
1: अदा मजबूर आशिक के अंजा यार दोस्त रोकिन था तू मैंने महबूब सम्मेलन नवन मुझा दुश्मन तोखे होते तुझा वेरी मारे विझंदा अर्ज करे पियो मां मौत खान थो डजा बहरहाल महबूब जो दीदार जरूर करणो पवंदो मां त घणो पंहिंजे पाण खे रोचा पर छा करियां मुंहिंजी दिलि नथी रहे

साईं मुंहिंजा जुदाईअ जो जबल जॾहिं जीअ मथां किरंदो आहे तॾहिं जिस्म जो कीमो थी पवंदा आहिनि जुदाई जानब जी जुदाई जुदाई पिरी प्यारे जी जुदाई ऐं जुदाई मन घुरे महबूब जी जुदाई चवंदा आहिनि त जंहिं ते गुज़रे सोई ॼाणे केरु थो कंहिंजी जुदाई ॼाणे जुदाईअ जा बि केतिरा ई क़िस्म थींदा आहिनि हमेशा वारी डिघी जुदाई कुझु सालनि वारी जुदाई ऐं थोरे वक़्त वारी जुदाई मतिलबु त जुदाई कहिड़ी बि हुजे जुदाई जुदाई आहे जीउ झोरे विझे थी हिया फाड़े विझे थी।

जी समय असांजे प्रोग्राम रोशन सुबुह में असांजी गुजारत आहे त पोख ते चढ़ी बलाऊं छॾियाऊं ईअं न चयाऊं पखेड़ी। जी साईं मुंहिंजा बिल्कुल असांजी जेका हिन हफ़्ते पंहिंजो गुजारत आहे तमामु आसान आहे टिनि पवन सां आहे। त साईं मुंहिंजा जेकॾहिं गुजारत भञबी आहे उको दुको हणबो आहे त हुन में चवंदा आहिनि त गुजारत जी दुनिया में जेको चइबो आहे त चालीह पती बि जेकॾहिं हुन में सही हूंदी आहे त हुन जो जवाबु असांखे दुरुस्त मञणो पवंदो आहे। पर तव्हांखे कोशिश करणी पवंदी कंहिं खां पुछणो ज़रूरु पवंदो। जेको गुजारत आहे उहा आहे पोख ते चढ़ी बलाऊं छॾियाऊं ईअं न चयाऊं पखेड़ी। पोख में बलाउनि में ऐं जेको आहे पखियुनि में असांजी गुजारत भॼी सघी तव्हां सां इनबॉक्स में मोकिले सघो था। इनबॉक्स में आसान तरीक़ो आहे पंहिंजो मोबाइल जे राइट ऑप्शन में वेंदो एल आर के लिखी स्पेस ॾींदव पंहिंजो नालो पंहिंजे ॻोठ जो नालो ऐं सवाल लिखी करे तव्हां 888-1 ते तव्हां मोकिले सघो था ऐं तव्हां असांजे GFM88 जी आईडी ते तव्हां असांजे फेसबुक ते बि मोकिले सघो था पंहिंजे गुजारत जो सही जवाब ऐं असांजे स्टूडियो जे मोबाइल नंबर ते बि तव्हां असांखे 0333221322 ते बि तव्हां असांखे गुजारत जो सही जवाब असां ॾे तव्हां मोकिले सघो था ॿुधाए सघो था। ऐं असांजी गुजारत आहे त पोख ते चढ़ी बलाऊं छॾियाऊं ईअं न चयाऊं पखीअड़ी ऐं सवाल जो जवाब गुजारत जवाब ॻोल्हियो ऐं थोरी देरि मिलंदासीं न्यूज़ ब्रेक जी तरफ़ कमर्शियल ब्रेक जी तरफ़ वरी वापसि ईंदासीं कॾहिं बि न वञिजो।

ईरान ऐं अमरीका विच में टेक्निकल सतह जे ॻाल्हियुनि जो ईंदड़ मरहलो 14 ऐं 15 जुलाई ते इस्लामाबाद में थियण जो इम्कान। हुकूमती ज़रियुनि जो चवण आहे त स्विट्ज़रलैंड जे शहर बर्गेनस्टाग ऐं कतर जी राजधानी दोहा में ॻाल्हियुनि जा ॿ दौर थी चुका आहिनि। टेक्निकल मामलनि ते ईरान ऐं अमरीका माहिर ॻाल्हियुनि जे ईंदड़ मरहले में शरीक थींदा। पाकिस्तान जो आख़िरी कंदड़ तौर ईरान ऐं अमरीका विच में टेक्निकल ॻाल्हियुनि में शरीक थींदो। परडे॒ही मीडिया मूजिब इस्लामाबाद में थींदड़ ॻाल्हियुनि में एटमी प्रोग्राम ज़ब्त कयल असासनि ते बि गौर कयो वेंदो। ॻाल्हियुनि में शिरकत लाइ ईरानी वफ़द जो फ़ैसिलो शहीद सुप्रीम लीडर जी तदफ़ीन बाद थींदो। ईरानी शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ुमेनी जी शिरकत खे रोअंदो ॾिसी अमरीकी सदर ट्रंप हैरान थी वियो। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट मूजिब ट्रंप चयो त हू समझंदो हो त ईरान जा माण्हू आयतुल्लाह ख़ुमेनी सां नफ़रत कंदा हुआ। सन जनाज़े में माण्हुनि खे रोअंदो ॾिसी हैरत थी आहे। चाहियूं था जनाज़े में मौजूद समूरनि माण्हुनि खे निशानो बणाए सघूं पिया, पर असां ईअं न कंदासीं छो त अहिड़े अमल सां ॻाल्हियुनि लाइ को बि न बचे हा। ईरान ऐं अमरीका इतफ़ाक़ सां ॻाल्हियुनि में आर्ज़ी तौर ते वक़्फ़ो करण जो फ़ैसिलो कयो।

कानून वाले वफाक वजीर सेनेटर आजम नजीर तारल चवाय सं दुनिया की सब का वही स्पेक्ट्रम एक्शन कर छो टेली कम्युनिकेशन एक्ट में तरमीम है। आजम नजीर तारल शिजाफत में असर इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कई तालीम मकसद फ्री लॉन्सिंग ला डिजिटल कनेक्टिविटी जरूरी है। कें एक कंपनी के नवाजन वाले इल्जाम शाहिदून मिली शिजा टेली कम्युनिकेशन एक्ट में तरमीम लाए इतफाक राय से कानून साधी कई पई वे वक्त से गड निजाम में बेहतरी आने जरूरी है।

0: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवां दवां, यह है मोहब्बत व यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
1: सुनते रहो GFM 90.4।
2: छावा पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहया आयो
3: तपोए GFM 90.4 मान एक एडो FM रेडियो आए
2: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल।
3: आई हाँ गोठन शहरन आई परे परे ताई बुधो वींदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
2: बस पो हाने खणो फोन आई पेंजे इश्तियार लाइन लाए
3: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सा हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
2: 0331252578 6।
3: जी हाँ 2315525786।
2: GFM रेडियो नेटवर्क,
3: सिंध जो आवाज़।

दोस्तों कोई मां जनी लाए मुआसी से कांधी न थिया पर इके शायद खबर न हुंदी तो यो की छो ऐ छो सडियो तो जनी लाए मुआसी से कांधी न थिया आश्क वेचारो जना बीमार छो यो किसो ताके आ सही करे तो बुधाया आश्क वेचारो जना बीमार छो पंजे माइटन आई दोस्तन के चई तो मुखे पंजे महबूब जे मुल्क ते खणी हलो आ उते मरंदुस जो मुझो महबूब मुझो कुल्हे कांधी थे ओ मुज

के हो तो आवाज भी सिंक की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंक की आवाज।

जी सेम जा प्रोग्राम रोशन सुबह में असांजी अॼु गुजारत आहे तमाम आसान गुजारत आहे जंहिं जा टे पावा आहिनि तव्हां टिनि पावनि में ॻोल्हे सघो था गुजारत आहे त पोख ते चढ़ी बलाऊं छॾियाऊं ईअं न चयाऊं पखी अड़ी पोख ते चढ़ी बलाऊं छॾियाऊं ईअं न चयाऊं पखी अड़ी पोख में बि भॼी सघे थी पोख जा तव्हां नाला खणंदव ऐं तव्हां बलाउनि जा नाला खणंदव त बलाउनि में बि भॼी सघे थी ऐं तव्हांजी गुजारत पखियुनि में बि भॼी सघे थी टे पवा आहिनि ऐं तमामु आसान जेको आहे गुजारत आहे ऐं तव्हां असां ॾे उन जो सही जवाब मोकिले सघो था मोबाइल जे राइट ऑप्शन में वेंदो उते एल आर खे लिखी तव्हां स्पेस ॾींदव ऐं स्पेस खां बाद में तव्हां पंहिंजो नालो पंहिंजे ॻोठ जो नालो ऐं गुजारत जो सही जवाब लिखी करे तव्हां 888 ते मोकिले सघो था जेके दोस्त नवां प्रोग्राम ॿुधनि पिया ऐं GFM88 जी आईडी आहे फेसबुक जी तव्हां फेसबुक जे जेकॾहिं प्रोग्राम ॿुधो पिया त तव्हां उन ते बि असांजे सवाल जो गुजारत जो जवाब मोकिले सघो था ऐं असांजे स्टूडियो में मोबाइल जेको नंबर आहे उहो लाइव आन आहे तव्हां जा असां नाला हिते बि लिखी सघंदा सवाल जो सही जवाब मोकिले सघो था गुजारत जो सही जवाब मोकिले सघो था असांजो नंबर आहे 0332132288 साईं जा अॼुकल्ह फ़क़ीरनि जो बि हिकड़ो औज तमामु वधी वियो आहे पिनण अॼु जे दौर में कारोबार याने धंधो थी वियो आहे माण्हू पंहिंजनि औरतुनि ऐं मासूम ॿारनि खे बि पिनाइनि था ऐं अॼुकल्ह पिनण जे कारोबार जो जेको वॾनि शहरनि में ठीका थियनि था ऐं माण्हुनि खे पैसनि एवज़ माण्हू फ़क़ीर पिनाइनि था अधु पैसा पाण था खणनि ऐं अधु पैसा वरी उन्हनि पिनण वारनि खे ॾियनि था ऐं पाण जॾहिं इहा मालूमत कईसीं इहा हक़ीक़त मालूम थी त पाण सभु दंग रहिजी वियासीं त समुझ में न पियो अचे त इहा ॻाल्हि वाक़ई हक़ीक़त आहे या वाक़ई ईअं थिए पियो ऐं साईं जा ॿुधायो वञे पियो त उहे ठेकेदार पेनाओ मर्द ऐं औरतुनि खे नंढा लाउड स्पीकर वठी ॾियनि था ऐं शहर जा इलाइक़ा वरी हुनखे बाद में विरहाए ॾींदा आहिनि ऐं उहे औरतूं नंढा ॿार साण करे फाटल कपिड़ा पाए ऐं शहर जे चौकनि चौराहनि ते पिनण जा होका पिया ॾींदा मुख़्तलिफ़ क़िस्मनि जा ऐं हक़ीक़त में पिनण जा जेके ख़ैरात वठण जा जेके हक़दार आहिनि उहे जेके मज़ूर आहिनि वीचारा ऐं वॾी उमिरि वारा आहिनि ऐं तमामु हिकिड़ा अपाहज आहिनि उहे हिकिड़ो वठी सघंदा ख़ैर ख़ैरात ऐं ही माण्हू हथ जूं जंगनि ते पटियूं ॿधनि था बाहुनि ते पटियूं ॿधनि था हिकिड़ी मलम हिकिड़ी अहिड़े क़िस्म जी आहे जेका पाण ॾिसूं पिया त उहा लाहे करे पाण खे बीमार लाचार करे पंहिंजे माण्हुनि जे आॾो हथ टंगनि था ऐं उन्हनि जो अहिड़ो फ़र्क़ु ऐं इहो हुन जो हिकिड़ो फन आहे सवली सिंधी में इहो बि चयो वञे थो त उत्तम खेती नीच नौकिरी वधंदड़ वापार ऐं पिनण बेकार।

0: की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। खूबसूरती है जो असल राज, सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। हिन में मौजूद विटामिन ई बीड्स ए जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवां जी स्किन के बनाए निखरी ए चमकदार सिर्फ बिन दिहन में। डार्क स्पॉट्स के करे खत्म ए दिए कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन जो शो। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज, GFM 90.4।
1: कारोबार की तरक्की लाए सोचे रहा आयो?
2: GFM 90.4 बदीन एक अड़ो FM रेडियो आए
1: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल।
2: हाँ, गोठन शहरन परे परे ताई बुधो वींदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
1: बस पो हाने खणो फोन पेंजे इश्तियार हलायण लाए
2: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बग हिन नंबर ते राबतो कंदा।
1: 0331252578।
2: जी हाँ,

0: time to commercial break. Zindagi guzario, etmad sa Quran ki sati. GFM 88 network te.
1: 88 network. Sindh ki awaaz.
2: त उन्हनि जा नाला मूंखे ज़रूरु ॿुधाईंदा थी उन्हनि जे इंतज़ार जूं घड़ियूं ख़तमु हूंदियूं ऐं सभिनी जी दिलि बि धड़कंदी हूंदी त मुंहिंजो जवाबु सही आहे अलाए

वटि आहे। त साईं मुंहिंजा अॼुकल्ह हिन गर्मियुनि में बि धड़कन वधी वई आहे उन्हनि माण्हुनि जी जंहिंजूं हिननि गर्मियुनि में हिन साह साटींदड़ ज़िंदगीअ में जेको आहे सो माण्हुनि जी शादी पई थिए, कंहिंजा जेको आहे सो छठियूं पियूं थियनि, त कंहिंजा वरी सुनत पिया थिए। त बहरहाल मुंहिंजी दिलि चवंदी आहे त हर कंहिंजे अङण ते ख़ुशीअ जा दोल पिया वॼनि ऐं दोलनि जे ददकनि ते ताड़नि जा टहकार हुजनि ऐं झुमिरनि जा झूला पिया झूलनि ऐं नीह निरवार थी पियो नचे। ऐं शायरी जे हवाले सां लोकगीत हुजे या सेरो हुजे, हिन सिन्फ़ में खुलियल ख़ुशीअ जो इज़हार हूंदो आहे। पोइ मङणी हुजे, निकाह हुजे, कुंवार जो वनवाह हुजे या शादी हुजे, जेको

0: रखे हो तो आवाज भी सिंक की है। GFM 88 नेटवर्क सिंक की आवाज।
1: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
0: अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।
2: तव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो
3: त पोइ GFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
2: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
3: ऐं हा, ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
2: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
3: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
2: 0331252576।
3: जी हा, 2315525786।
2: GFM रेडियो नेटवर्क
3: सिंध जो आवाज़।

जी साईं जा अवां जे इंतज़ार जूं घड़ियूं ख़तम, प्रोग्राम रोशन सुबुह में जेका गुजरत नी से त पोख ते चढ़ी बलाऊं छॾियाऊं, ईअं न चयाऊं पखेड़ी। त साईं मुंहिंजा कोशिश कामयाबी जी कुंजी आहे। जेकर इंसान थोरी बि कोशिश कंदो, थोरी बि मेहनत कंदो त उनखे उन सवाल जो जवाब, उनखे उन गुजरत जो जवाब ज़रूर अची वेंदो। जेकॾहिं एतिरी बि कोशिश नथो करे त थोरो कंहिं वॾड़नि खां, जेके सालिख आहिनि, जेके सुघड़नि, उन्हनि खां बि मालूमात पाण वठी सघे थो, उन में मालूमात मिलंदी। कुझु दोस्तनि पंहिंजो मेहनत कई आहे, कोशिश कई आहे, सॼे प्रोग्राम ॿिनि कलाकनि जे प्रोग्राम में काफ़ी नाला आया आहिनि, काफ़ी दोस्तनि फोन कई आहे, SMS कया आहिनि, पर टे दोस्त आहिनि जिन जी गुजारत जो जवाब सही आहे, जंहिंमें हिकड़े भाउ कुधको आयो आहे, बाक़ी ॿिनि दोस्तनि जेको आहे सो उहो सही जवाब ॾिनो आहे, बिल्कुलु परफेक्ट सही जवाब ॾिनो आहे। त मां तव्हांखे पहिरियां गुजारत सिधी थो करे ॿुधायां त गुजारत असल में आहे छा। गुजारत इहा आहे त पोख ते चढ़ी बलाऊं छॾियाऊं, ईअं न चयाऊं पखेड़ी। त इहा असांजे वञे थी सुर उमर मारवी में। सुर उमर मारवी में जॾहिं इहा गुजारत वञे थी त उमर जॾहिं मारवीअ खे उन खूह तां खयो मथे खूह तां, त हूअ साहेड़ियुनि सां गॾु उन खूह ते पाणी भरणाई। त उते जॾहिं उमर हुन खे खयो त पोइ असुल ॻाल्हि पोख ते चढ़ी बलाऊं छॾियाऊं, माना पोख महरी उठ ते, महरी पोख है, महरी दाल जेका असां खाईंदा आहियूं उहा महरी पोख है। महरी उठ ते चढ़ी बलाऊं छॾियाऊं, बॾाऊं माना वागूं, जेके पंहिंजे उठ जूं रस्सा हूंदा आहिनि, असां हुनखे वागूं बि चवंदा आहियूं, त वागूं बलाऊं बि आहिनि। त उहो त उठ ते महरी उठ ते चढ़ी बलाऊं छॾियाऊं, माना वागूं छॾियाऊं। उन खां बाद वञी उठो हलियो त मारुई पंहिंजे साहेड़ियुनि खे मयार थी ॾे त ईअं न चयाऊं आउड़ी। सम्झी आड़ी जेका आहे उहा आहे पखी। त साहेड़ियुनि खे मयार पई ॾे त ईअं न चयाऊं आउड़ी। आड़ी माना पखी आहे। त साईं मुंहिंजा उको धुको जेको आहे सो हिकड़े दोस्त हयो आहे मीरपुर ख़ासि खां, भाउ इक़बाल लाचारी आड़ीअ जो उको धुको हयो, ऐं असांजो हाफिज़ मुनीर खोसो लाड़काणे खां उन भाउ जेको आहे सो आड़ी बि ॿुधायो आहे, वागो बि ॿुधायो आहे, ऐं भाउ थोरी सिधी कई, सिर्फ़ हुन सुर ससुई मां ॿुधायो, पर असुल सुर उमर मारवी आहे। ऐं सुर उमर मारवी ऐं हुन जा टई पावा जेको असांखे ॿुधाया भाउ अज़ीज़ सोलंगी मीरपुर ख़ासि खां, भाउ जी वॾी महिरबानी। पहिरें नंबर ते असांजो भाउ अज़ीज़ सोलंगी गुजारत जो सिधो जवाब ॾिनो, ऐं उमर मारवी जो जेको सुर हुयो उन मां सिधो करे ऐं सॼो जेको किसो आहे हुन भाउ इहो ॿुधायो त हुन पंहिंजो महरी पोख बि ॿुधाई ऐं जेको आहे सो वागूं बि ॿुधायो, बलान में आड़ी पखी ॿुधायो। पहिरें नंबर ते भाउ अज़ीज़ सोलंगी मीरपुर ख़ासि खां, ॿिए नंबर ते भाउ हाफिज़ मुनीर सोलंगी मुनीर खोसो लाड़काणे खां, ऐं टे नंबर ते भाउ उको धुको जेको हयो भाउ इक़बाल लाचारियुनि जी वॾी महिरबानी। त असांजा भाउ असांजी गुजरत इहा आई त पोख ते चढ़ी बलाऊं छॾियाऊं, ईअं न चयाऊं पखीअड़ी, यानी पोख महरी उठ ते चढ़ी वागूं छॾियाऊं। वागूं माना रस्सा, उहे वागूं आहिनि। ऐं उमर मारवी जॾहिं मारवी वई त मारवी पंहिंजो पंहिंजे साहेलियुनि खे मज़ार पई ॾे, ईअं न चयाऊं आवड़ी। आड़ी पखी आहे। त साईं मुंहिंजा इन्हनि टिनि दोस्तनि जे नाम असां कंदासीं जलाल चांडे जो ख़ूबसूरत नगमो नाम, ऐं गॾिजी ॿुधो, इंजॉय कयो।

जी हा समय जलाल चांडी इन खूसल कलाम ते प्रोग्राम रोशन सुबुह जो वक्त पहुंचे पे पंहिंजी पुॼाणी ते पंहिंजे मेज़बान नेमत अल्लाह जूणे जो ॾींदा इजाज़त अल्लाह जे कहा।

खैरपुर शहर मां गुजरंदड़ मीर वा कैनाल मां नामालूम शख्स जो लाश हथ इलाइक़े वासिन लाश ॾिसी पुलिस खे इतलाह ॾिनो। पुलिस पहुची लाश अस्पताल मुंतकिल कयो। कंदकोट में रसालदार शाही वाह में ॿुडी फोत थियल ॿार जो लाश हथ मकामी माण्हुनि खे घटू शाख मां ॿार जो लाश मिलियो।

0: लाड़काने जी मार्केट थाने क्षेत्र में सरकरियो पीरवार इलाके में पुलिस जब मुकाबलो एक दुहारी मार्च पियो पुलिस फौज मार्च पर दुहारी की सुजाणप वारा वासी रफीकपुर मोर चांडियो तौर थी है जवाबदार खिलाफ मुख्य थाना में केस दाखिल थे पुलिस पारा मामले की जांच शुरू की वही है।
1: सोलर ए बैटरी ते डायरेक्ट
2: GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज सिंध की आवाज।
3: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
2: सुनते रहो GFM 90.4।
4: छा वहां पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहया आयो
5: तो पोए GFM 90.4 मातली बदीन एक एड़ो FM रेडियो आए
4: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल
5: आई हाँ गोठन शहरन ए परे परे ताई बुधो वींदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
4: बस पो हाने खणो फोन ए पेंजे इश्तियार हलायण लाए
5: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सा हिन नंबर ते राब्तो कंदा
4: 0331252576।
5: जी हाँ बुड़ी 331 5576
4: GFM रेडियो नेटवर्क
5: सिंध जो आवाज़।

0: आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

0: क्या आप जोड़ों के दर्द, पट्ठों के खिंचाव, कमर दर्द या सूजन से
1: मास्क क्रीम मुतासरा जगह पर तेजी से जज्ब होकर
0: दर्द और सोजिश से आराम पहुंचाती है।
1: रोजमर्रा के जिस्मानी दर्द,
0: वर्जिश के बाद होने वाली तकलीफ,
1: गर्दन और कंधों के दर्द
0: और पट्ठों की अकड़न के लिए बेहतरीन इंतखाब
1: सिर्फ

0: आप जोड़ों के दर्द, पट्टों के खिंचाव, कमर दर्द या सूजन से
1: ये मास्क क्रीम मुतासर जगह पर तेजी से जज्ब होकर
0: दर्द और सोजिश से आराम पहुंचाती है।
1: रोजमर्रा के जिस्मानी दर्द,
0: वर्जिश के बाद होने वाली तकलीफ,
1: गर्दन और कंधों के दर्द
0: और पट्टों की अकड़न के लिए बेहतरीन इंतखाब।
1: सिर्फ मुतासर जगह पर दिन में 3 से 4 मरतबा नरमी से लगाएं और सुकून का एहसास पाएं।
0: उमरा और हज पर जाने वाले हजरात फकीरी एनाल्जेसिक क्रीम को अपने हमरा रखें।
1: फकीरी एनाल्जेसिक क्रीम, दर्द, सूजन, वर्म फौरी खत्म। आज ही करीबी स्टोर से।

0: आप सुन रहे हैं GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: अपना शहर, अपना घर, माटली और माटली की आवाज GAFM 90.4।
2: छावा पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहया आयो
3: तपोए GAFM 90.4 मातली बदीन एक एडो FM रेडियो आए
2: जेको हले तो बिना ब्रेक है मुसलसल।
3: आई हां गोठन शहरन आई परे परे ताई बुधो विंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
2: बस पो हाने खणो फोन आई पेंजे इश्तियार लाण लाए
3: असान जे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सा हिन नंबर ते राबतो कंदा
2: 0331252586।
3: जी हां बुड़ी 381 25 25 786
2: GAFM रेडियो नेटवर्क
3: सिंध जो आवाज़।

0: सिंध के माथे का झूमर
1: DFM 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज। मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
1: सुनते रहो GFM 90.4।
3: आचर के डी सुबह जो 10 बजे का मंझन जो 4 बजे तई। एड्रेस नेशनल मेडिकल सेंटर, लेडीज जेल रोड।

0: Jak je to fajné, to program je
1: to. Ok, ये किसका गाना है?
0: ये मुझे दादे मंजूर सकता है जो.
1: ओके मैं बिल्कुल इसको सर्च करती हूँ और मुझे ये बताइए कि किसी को डेडिकेट करना है
0: ये आपको.
1: ओके जी थैंक यू सो मच अल्लाह हाफिज़. भाई का गाना हम सर्च करके प्ले करेंगे कर दिया है तो सुनेंगे और एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक की जाने में जाएंगे स्टे ट्यून्ड.

0: GAFM 88 नेटवर्क जिंदगी आवाज
1: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 7:30 ते सिर्फ GAFM 88 नेटवर्क ते
2: तमाम भी पैंजो ख्वाबन जो घर एक अहड़ी जाए ते ठाण चाहो था जिते होजे तहफुज जदीद सहूलियतों ए मंजूर थियल सिक्योरिटी
3: तपोई भली कार हुसैनी मंजिल हाउसिंग स्कीम सखर में
2: सखर शिकारपुर रोड ते
3: डॉक्टर जियाउद्दीन मेडिकल यूनिवर्सिटी जी बिल्कुल सामू
2: सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी पारा मंजूर थियल
3: एक शानदार ए काबिले एतमाद रिहायशी मनसूबो
2: हुसैनी मंजिल हाउसिंग स्कीम।

0: सिंध के माथे का झूमर
1: GFM 88 नेटवर्क
0: सिंध की आवाज।
2: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
0: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
1: सुनते रहो GFM 90.4।

और कम होने का कोई इम्कान दूर दूर तक दिख नहीं रहा है. जो मौसम सुहाना है लेकिन दूसरे शहरों का

0: Okay, next caller. Hello?
1: Hello?
0: Hello, kaun baat kar rahe hain, kahan se?
1: SRH Rodi se.
0: SRH, kaun sa gaana ga rahe hain?
1: Kaun sa gaana ga rahe hain?
0: Aap batae na.
1: Main bhi kharidunga.
0: Bollywood ka hai na?
1: Ji.
0: तो बॉलीवुड का थोड़ी गाना है, पाकिस्तानी गाना गाना है.
1: नहीं नहीं नहीं नहीं, ये बॉलीवुड का नहीं, अपना है हॉलीवुड. शहजाद अली का.
0: शहजाद रोही का?
1: नहीं नहीं, शहजाद अली का.
0: शहजाद अली का, चले मैं देख रही हूँ, उसको सर्च करके सुना दे फिर.
1: मैं भी खरीदार हूँ, मैं भी खरीदूंगा. प्यार कहाँ बिकता है बता बता दो.
0: अच्छा, तो थोड़ा सा सुर लगा के गाए ना, ऐसे गाए ना. मैं भी खरीदार हूँ, मैं भी खरीदूंगा. मेरे सुर आपसे भी बिगड़े हुए. ऐसे ऐसे ऐसे, ये देखिए मैंने प्ले कर दिया है. असल में ये गाना मुझे गाना नहीं आता.
1: ठीक है,
0: बिगाड़ेंगे गाना या मैं आगे गाना प्ले कर दूँ?

0: तवलो मुझको तो मेरे यार तवलो मुझको हो गया गुलाबी आके जो तेरी बेटी हो गया।
1: वेरी नाइस। किसी को डेडिकेट करना है? दोस्ती नहीं है, चले फिर किसी को डेलीगेट नहीं करना, फिर हम आगे चलते हैं।
0: गाना है देखो, गाना है ये तो मेरे
1: दुखा। हाँ जी, मैं जिसका भी है, लेकिन हम आतिफ असलम का सुनेंगे, ठीक है?
0: हाँ ठीक है, ठीक है।
1: ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।
2: शराबी ये दिल हो गया।
1: आज का तंग टिस्टर, परवीन ने प्लास्टिक की प्लेट पर पिस्ते, पापड़ और पॉपकॉर्न पेश किए, ठीक है? ये कहना है परवीन ने प्लास्टिक की प्लेट पर पिस्ते, पापड़ और पॉपकॉर्न पेश किए। इसको जल्दी जल्दी कहना है, ठीक है? परवीन ने प्लास्टिक की प्लेट पर पिस्ते, पापड़ और पॉपकॉर्न पेश किए, ठीक है? जितनी स्पीड में जल्दी जल्दी और ज्यादा से ज्यादा बोलेंगे, वो जो बंदा बोलेगा वो विन कर जाएगा अगले सेगमेंट को, जिसका नाम है बोलो तो माने।

हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

सिंध में पाणीअ खोट संगीन थी वई। आबादगारनि जा मुख़्तलिफ़ शहरनि में मुज़ाहिरा कनि। कोट में मुराद शाख जे आबादगारनि पाणीअ खोट ख़िलाफ़ इंडस हाईवे ते धरणो आयो। खानपुर महर में खानगढ़ जे मुख़्तलिफ़ वाहन में पाणी खोट ख़िलाफ़ आबादगारनि धरणो हयो। आबादगारनि जो पाणी फराहम करे ज़राअत खे बचाइण जो मुतालबो।

0: रायपुर शहर में गुजरंदड़ मीरवा केनाल में नामालूम शख्स जो लाश हथ इलाके वासन लाश ऐसी पुलिस के इतला डो। पुलिस पहुंची लाश अस्पताल मुंतकिल किया। कनकोट में रिसालदार शाहीवा में बुरी फोत बार जो लाश हथ मकामी मानन के घोटू शाख में बार जो लाश मिलो।
1: लाड़काने जी मार्केट थाने के हद सरहद कटो पीर वाले इलाके में पुलिस मुकाबलो एक डुआरी मार वो पुलिस मौजू मार वेल डुआरी की सुणप वारे वासी रफीक पुट मोर चांडियो तौर थी है। जवाबदार खिलाफ मुख्तलिफ थानन ते केस दाखिल थियल जांच जारी है।
0: चुकबी जो कारे इल्जाम हेट नारी के कतल जो जरगो इल्जाम हेट आयल जवाबदार मथा 1.75 लाख रूपया दंड लागू। घोट छुट्टोशर में 1.5 महीनो अग मुबैना तौर ते कतल थियल नारी अमीना जाल इशफाकशर के कतल जो जरगो कयो वियो। घोट डेहा में लाल लिनो शाह की सरबराई में जरगो थियो। नौजवान नाजुक शर मथा 1.75 लाख रूपया दंड विधो वियो। वाके जो केस औरत के मुड़स इशफाकशर बख्शली शर ए बियन खिलाफ दाखिल कयो वियो हो। जवाबदारन जरगो सदाए मकतूल औरत के कारो करार दई नौजवान मथा दंड रखियो।
1: ठो वेझो दाबे की वट बंशात से भरल कार ड्राइवर के कंट्रोल में निकरी कल्टी। बजणा फो तेज रफ्तार कार मुसाफिर वेन से टकराजन बाद कल्टी थी वही। बजणा फो ते 5 जणा जख्मी थे। पुलिस पहुंची लाश ए जख्मी के अस्पताल मुंतकिल कयो। मंशात तहवील में वरती वही।
0: फुटबॉल वर्ल्ड कप जो प्री क्वार्टर फाइनल जारी। 5 भेरा फुटबॉल जो आलमी चैम्पियन अंदर ब्राजील की टीम इवेंट का बाहर थी वही। नॉर्वे ब्राजील के 1-1 मुकाबले में 2 गोलन ता शिकस्त दई इवेंट का बाहर कर छो। इंग्लैंड दिलचस्प मुकाबले बाद मैक्सिको 2 मुकाबले में 3 गोलन ता शिकस्त दिनी। क्वार्टर फाइनल में इंग्लैंड जो मुकाबलो नॉर्वे से थन्द। कैनेडा मैक्सिको ए ब्राजील शिकस्त बाद इवेंट का बाहर थी चुक्यू आन।

0: सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवां दवां, यह है मोहब्बतो यकजहती का पैगाम यहां वहां। GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
2: तव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक्की लाइ सोचे रहिया आहियो?
3: त पोइ GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
2: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
3: ऐं हा, ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
2: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
3: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
2: 0331252576।
3: जी हा, 2315525786।
2: GAFM रेडियो नेटवर्क,
3: सिंध जो आवाज़।

गुजरंदो वने पे त तवा जी स्किन जे का ना खराब थिंदी वने पे तवा जे चेहरे ते खोर सारी चीजू अजन भई जेके तवा न चांदी जी न जेको आ खत्म न ता करे सको ए उन का अलावा तवा चायो था तवा वट कोई एड़ो प्रोडक्ट हो जे जेको बाबा केमिकल जे में न होजन ए जेको तवा लगायो तो तवा जी खूबसूरती जे का ना वा भई मेंटेन रहे ए तवा जी खूबसूरती तवा के वापस मिली वने ए अक्सर ये भी थिंदो आ त जे जी स्किन काफी घणी सेंसिटिव हुंदी आ न त सेंसिटिव स्किन वाला मानु थोड़ो सोचिना आ त असा ही प्रोडक्ट लगायो या वरी न लगायो त जे जी स्किन काफी ज्यादा सेंसिटिव आ या फिर तवा यो सोचो प्यार त असा बाबा ही प्रोडक्ट लगायो या कोन लगाने तवा के हाने एकड़ो एड़ो प्रोडक्ट बुधायां थी जेको न सिर्फ तवा जी सेंसिटिव स्किन जे मुताबिक तैयार थियल आए बल्कि तवा जी स्किन के सफा या वीआईपी बनाए छडींदो सो अगर आप यहां पर इस्तेमाल करने वाले हैं डी स्किन ब्यूटी क्रीम तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम में जो ना कुछ ऐसी बातें हैं जो कि जानना आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है और डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगी वो तमाम बातें जो कि जानना आप लोगों का फर्ज बनती है तो बिल्कुल जी डी स्किन ब्यूटी क्रीम के अंदर आप लोग अच्छे से जानते हैं कि विटामिन ई बीड्स मौजूद हैं एंड माइक्रो बीड्स फॉर्मुलेशन से तैयार किया गया ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो ना सिर्फ आपकी खूबसूरती को मेंटेन रखेगा बल्कि आपकी खूबसूरती जो कहीं गायब हो चुकी है वो वापस भी आ जाएगी और आप लोगों की स्किन चमकना दमकना शुरू हो जाएगी वो भी पता है सिर्फ दो दिनों के इस्तेमाल से यानी कि अगर आप दो रातें इस्तेमाल करेंगे तो आप लोगों को बहुत अच्छे वाले रिजल्ट्स मिल जाएंगे और डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो है ना बिल्कुल जी डी स्किन ब्यूटी क्रीम जिल्द की खूबसूरती और हिफाजत के लिए तैयार की गई है एक मयारी ब्यूटी क्रीम है ये जिल्द को नरमी जो है ना वो फराम करती है और चेहरे को नरम मुलायम और तरोताजा रखने में मदद देती है अगर आप इस्तेमाल करते हैं रोजाना डी स्किन ब्यूटी क्रीम तो आपकी जिल्द की जो रौनक है ना वो भी आपको वापस मिल जाती है और आपकी स्किन जो है ना वो ग्लो करना स्टार्ट हो जाती है और वो भी सिर्फ और सिर्फ दो दिनों के इस्तेमाल से क्या बात है ओके जी सर जब आप दो दिनों के बाद अपना चेहरा देखेंगे तो आप लोगों को वाजे नतायज और ना वो नजर आना स्टार्ट हो जाएंगे क्योंकि जब आप इस्तेमाल करेंगे डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो कि भाई जदीद अज्जा से तैयार किया गया है जिसके अंदर अल्फा आर्बुटीन मौजूद है कोजिक एसिड मौजूद है ग्लूटाथायोन मौजूद है और उसके अलावा रात भर जो है ना ये आपकी स्किन को चमकाने का काम करेगी जबकि आपकी स्किन जो है वो ना सिर्फ खूबसूरत होगी बल्कि आपके चेहरे पर जितने प्रॉब्लम्स हैं लाइक अगर आपके चेहरे पर बहुत ज्यादा ये आंखों के हल्के पड़ चुके हैं बहुत ज्यादा ऐसे निशानात आ चुके हैं जिन्हें आप रिमूव करना चाहते हैं बहुत ज्यादा ऐसी चीजें जो कि आपके चेहरे पर आना स्टार्ट हो चुकी है और आप उन्हें खत्म करना चाहते हैं तो आपके पास डी स्किन ब्यूटी क्रीम मौजूद है और डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो है ना ये फुल जो है ना ऐसा फार्मूला है जिसे आप इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं कोई भी केमिकल नहीं जनाब इस्तेमाल करते रहिए खूबसूरतियां हासिल करते रहिए और रात के टाइम इस्तेमाल करेंगे डी स्किन ब्यूटी क्रीम और बात यहीं पर खत्म नहीं होती डी स्किन ब्यूटी क्रीम के साथ आपको डी स्किन फेस वॉश भी इस्तेमाल करना है और डी स्किन फेस वॉश की जब बात आती है तो डी स्किन फेस वॉश के बारे में आप लोगों को बताते हैं जनाब डी स्किन फेस वॉश जो है ये हाइलोरोनिक एसिड सीरम से तैयार किया गया है जो कि आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करता है आपकी स्किन को क्लीन करता है आपकी स्किन को हाइड्रेट रखता है अक्सर ऐसा होता है कि गर्मियों के मौसम में जो ना आपकी स्किन वैसे ही ऐसा होता है कि डिहाइड्रेट हो जाती है नजर आता है आपके चेहरे की स्किन जो है ना बड़ी रूखी सूखी सी हो चुकी है या फिर आप पानी का जो है ना वो मिकदार चाहे आप जितना पानी पीते हैं गर्मियों में तो ऐसा होता है ना कि अगर आपको प्यास लगती है तभी आप पीते हैं या फिर ज्यादा पानी पीते हैं तो अक्सर पानी का जो इस्तेमाल है ना आप अपनी जिंदगी में कुछ ज्यादा ही एड कर ले प्यास लगे ना लगे लेकिन फिर भी आपने पानी जो है ना वो पीते रहना है इससे ये होता है कि आपकी स्किन की जो है ना आधी प्रॉब्लम्स तो वैसे ही दूर हो जाती है बाकी जो आधी बचती है ना वो डी स्किन ब्यूटी क्रीम है वो जो है ना वो खत्म कर लेगी

इस्तेमाल कर सकता है. मजे वाले रिजल्ट्स हासिल करती रहिए और साथ साथ डायल करती रहिए 03-15-799-0595. बुड़ी 315-79-5595 ही नंबर आहे बाबा जेको तव्हां डायल करण वारा आहियो. उन खां पोइ तव्हां जे एरिया में जेको चाहे डी स्किन ब्यूटी क्रीम हुजे या वरी डी स्किन फेस वॉश हुजे ही अवेलेबल थी वेंदा. अवेलेबल थींदा त ज़ाहिर सी ॻाल्हि तव्हांखे वठण में आसानी थींदी ऐं तव्हां सां गॾु गॾु तव्हां जे जेके आस पास माण्हू उन्हनि खे बि आसानी थींदी. सो तव्हां अवेलेबल करायो ऐं इस्तेमाल कंदा रहो.

बैठी थे कि अदी अदा इतनी सी डब्बी में इतने सारे फायदे, वाओ हाँ छोटा पैक बड़ा धमाका, तो आपने सुना ही होगा बिल्कुल हुआ कार तो लगाई था ताकि ना खबर पंदी बाबा बाकी केडा सारा फायदा जेके तमा के मिलना है ओके जी सो तमा लाजमी ट्राई करी दिसो ना अलावा से गुड मौजूद आहन जी तमा जा फीडबैक्स आहन ओके ये हमारे साथ आई एम फाइन सदाकत हुसैन मीरानी साहब बच्चन शाह मियानी सखर से कहते हैं कि शो आपका अच्छा है और कहते हैं कि अंगूठी में नगीना फिट हो जाता है शो में आवाज फिट है सखर में व्हाइट एश क्रीम के प्रोडक्ट्स किस शॉप से मिलेंगे जरूर बताइएगा शो में अच्छा चले मैं आपको ये बताऊंगी कि सखर में आप अपने किसी भी करीबी जनरल स्टोर अगर वहां पर ऐसा फर्ज करेंगे नहीं मिल रहे तो जो नंबर आपको मैंने अभी अभी बताया ना उसके ऊपर आप रابطہ करके उनसे जरा मालूम कर लीजिए ये सखर में आपको कौन कौन सी जगहों पर मिलेंगे व्हाइट एज के प्रोडक्ट्स या फिर डी स्किन के प्रोडक्ट्स ओके जी वफा अब्दुल गफार खास केली कहते हैं आप कैसी हैं आपका शो वीआईपी है और आज आपने टॉपिक भी वीआईपी रखा है चलिए टॉपिक तो वीआईपी रखा है आपने फॉलो तो किया ही नहीं अच्छा विलेज गुलाम कासिम सोलंगी फ्रॉम हिंगोजा से दिलावर हुसैन सोलंगी बाजी सिजरा आप कैसी हैं बाजी एक सीन तो नहीं जो डिलीट किया जाए फिर भी डिलीट करने वाला सीन सिजरा अच्छा सिद्रा होगी जो हमें नींद भी नहीं करने देती है आज हमें मुमताज मोलाई का गाना सुनाइएगा चले मां कोशिश क्या थी ताजो गानो हलाइंदासी तमा चवा डेडिकेट ड्राइवर नजीर सोलंगी आसिम सोलंगी अली जान सोलंगी आसिफ एंड अल्लाह वसायो सोलंगी जे नाले ठीक हो गया जे और सायमा कहती है सिडो प्यारी लगता है तुम्हें नन एकड़ी गाल हाने मां डठो तवाजो मैसेज तवा जेको मैसेज न सिर्फ मलकू ताई होयो उन का पर ताजो मैसेज जेको नो मिसिंग पार्ट थी शायद मखे लगो तो मैसेज सिर्फ एतरो ही होयो सो ताजो जेको टॉपिक हो ना वो मैसेज में आयो ही न हो हाँ इतनी या मुझे गलती कौन था वाला मैं नन्ना मुन्ना राय देश का सिपाही हूँ हाथ ओछे से जानती हूँ और गुस्सा ना करे और शोने की इतनी आपकी जान में भी आपके साथ साथ हूँ आज अपने रूम में बैठ कर सुकून से आपका शो सुन रही हूँ आपका सुकून तबाह करने आपको आ जाएगा रुको जरा आशिक खास के लिए हमें सुन रही है नवाब शाह से वालेकुम अस्सलाम कहते हैं जी आपको और उनका अलावा

सही बात आडू भलो गाना तमाम उदू पया प्रोग्राम सुन रहे हैं व्हाइट एश एंड डी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से आप कौन सा प्रोडक्ट इस्तेमाल करें मुझे बताइए जल्दी से और साथ साथ आज आप मुझे ये बता रही हैं कि अगर आपको मौका मिले चांस मिले अपनी जिंदगी से एक अपना जो है ना ऐसा सीन जिसे आप डिलीट करना चाहते हैं अपनी जिंदगी से जिसे आप भूल नहीं पा रहे लेकिन आप उसे चाहते हैं इसे रिमूव करना है तो वो कौन सा सीन होगा जो कि आप रिमूव करने वाले हैं और इसी के साथ साथ एएम अंसारी क्या कहते हैं टॉपिक के ऊपर कहते हैं कि मैं उस पल को ढूंढ रहा हूं जहां ये मुखलिसी का एसिड मुझ में दाखिल हुआ फिर ये डिलीट छोटी सी बात है और वैसे आपने आखिर जो लिखा है वो बिल्कुल सही लिखा है मशवरा करना पड़ेगा किशोर भाई कहते हैं फेक लोग कहीं से नहीं आते हम में से ही होते हैं जैसे कुछ लोग कहते हैं मैं फेक हूँ फेक वो होता है जो सबको फेक लगे हाँ या तमाम सही गाल अच्छा नताशा गुल हमारे साथ मौजूद हैं हेलो नताशा कैसी हैं ठीक ठाक हैं कैसी बहुत प्यारी आवाज है आपकी कैसी हैं मैं ठीक हूँ आप बताएं आप कैसी हैं

सी डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाइए और आप भी खूबसूरत हो जाइए, क्योंकि आप भी खूबसूरत होना चाहते हैं, मैं जानती हूँ बिल्कुल, लेकिन आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगा नहीं रहे हैं तो लगाइए। और उसके अलावा हमारे साथी जी मोहम्मद जमान भाई कहते हैं असा भी तमाम जो सोनो शो बुधू पया असा के भी भलीकार कयो न भलीकार पापा भलीकार मोहम्मद जमान भाई तांजो मोहबदवान प्रोग्राम बुधू पया। अनवर भाई कहते मां भी चवा अज सिद्रा एतरी खुश हो आहे जो प्रोग्राम मुबारक वैसे ठीक अच्छा मोतिया से थानी मर्सद मौजूद है वालेकुम अस्सलाम भाई जान। नताशा हमें सखर से सुन रही है, नताशा आपको खुशामदीद कहा जाता है। अच्छा चाचा खालिद आपको अभी तक नहीं मिले क्या प्रोडक्ट्स बताएं मुझे जल्दी से। और उसके अलावा नताशा कहती हैं कि मेरे कमेंट्स पढ़ो, आपके कमेंट्स ही पढ़ रही हूँ मेरी जान, सब्र करिए सुकून करिए। अच्छा ये हमारे साथ है शमसुद्दीन मलिक, ओके आप हमें सुन रहे हैं पता नहीं कहाँ से। अच्छा मोरो से फ्राम में सोनिया आपके शो में पहली बार शामिल है। अच्छा ये इस आईडी के पीछे सोनिया मौजूद है, तो सोनिया आपको वेलकम करते हैं, बहुत शुक्रिया मोरो से आप हमारे साथ हैं। निदा बिल्कुल सही कह रही, लेकिन सब लोगों की जो सोच है ना वो हमारी सोच ऐसी तो नहीं है, हम ऐसा सोचते लेकिन वो तो नहीं ना। अच्छा ऐसा कहते मेरा बस चले तो मैं सभी एफएम पर आपका शो चला दूं। अरे भाई ना करे सीढ़ी गिर तो बोर दी ना वो का सोचे बैठो। अच्छा चाकर अली जलबानी भाई हाय, अब्दुल गफार हमारे साथ हैं, वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर अब्दुल गफार हमारे साथ हैं, ओके जी शाहपुर चाकर से आपको हम खुश आमदीद कहते हैं। अच्छा लोगों को क्या लग रहा है कि मतलब एडा पैसा करो तवा छो था मुझे पैसन दी दीद भी दिया आई मां करो लख दी बेटी कमाया बाबा लगे ये तो था मुझे नजर लगाई दो तो वहां कहो मां मासूम जो खुशी था के रास नहीं मचा।

0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। खूबसूरती है जो असल राज, सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। हिन में मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवां जी स्किन के बनाए निखरी और चमकदार। सिर्फ बिन डीहन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म और दिए कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर डी जो शो। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

जी वापस आ चुके हैं दोबारा से आप लोगों के पास और आप सुन रहे हैं जीएफएम 88 नेटवर्क. मौजूद है हमारे साथ सखर मोरो मीरपुर खास मटियारी सकरन मेहरापुर मातली और जनाब लाड़काना के लाइव स्टूडियो से आपके सिद्धराव के साथ मौजूद है. मेरे साथ कौन है मुझे बताते जा रहे हैं. शामली प्रोग्राम होते जा रहे हैं और अपने होने का एहसास दिलाते जा रहे हैं. ओके तो हम आ चुके हैं प्रोग्राम के लास्ट लिंक में और जिन लोगों ने अभी अभी सुना स्टार्ट किया या फिर जो स्टार्टिंग से लेकर हमारे साथ मौजूद है सभी को वेलकम इन खुशामदीद. आपकी मोहब्बतों समातों और चाहतों का बेहद वाला शुक्रिया.

बहुत ही प्यारा बहुत ही ब्यूटीफुल सा गाना यहाँ पर आप एंजॉय करें, और साथ साथ जनाब आपको ये भी बताएंगे कि प्रोग्राम में आप लोगों के लिए वाइटेश ब्यूटी प्रोडक्ट्स होते हैं, डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स होते हैं, तो वाइटेश ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में भी आप लोग जानते हैं और डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में भी जानते हैं, तो अगर थोड़ा सा मजीद जानना चाहते हैं तो वो बताएंगे आपको। अगर आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप लोगों को ये बताते चलो कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम वो लोग जो कि सेंसिटिव स्किन होने की वजह से कोई भी प्रोडक्ट नहीं लगा पाते हैं, तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम आपके लिए है जनाब, आप इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम के अंदर विटामिन ई बीट्स मौजूद है। माइक्रो बीट्स फार्मुलेशन से तैयार किया गया एक ऐसा शानदार सा प्रोडक्ट जो न सिर्फ आपकी खूबसूरती को मेंटेन करता है बल्कि आपकी खूबसूरती को और ज्यादा बढ़ाता है, आपकी खूबसूरती की हिफाजत करता है, चाहे आप मर्द हजरात हो चाहे आप खवातीन हो, हर कोई डी स्किन ब्यूटी क्रीम को इस्तेमाल कर सकता है, अपनी खूबसूरती को बढ़ा सकता है। इसी के साथ साथ डी स्किन ब्यूटी क्रीम के साथ आपको डी स्किन फेस वॉश भी मिल रहा है जो कि हाइलोरोनिक एसिड सीरम से तैयार किया गया है, आपकी स्किन को क्लीन करता है, आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करता है और आपकी स्किन को हाइड्रेट रखता है।

बहुत ही प्यारा गाना यहाँ पर आपने इंजॉय किया. एक और गाना हमारी लिस्ट में मौजूद है, ये वाला गाना भी हम सुनेंगे. और आप लोगों के जितने भी गाने हैं फरमाइशों वाले वो मैंने लगा लिए हैं भाई जान, आप इंजॉय करते रहेंगे. और ये गाना है जी हुमैरा चना की आवाज में. जाहिद अली बुर्दी कहते हैं एवन शो गुड शो सिद्रा मुस्कान जो जियो करे इस हाओ बाबा जियो करे इस. और नजरी कहती है हाँ भाई कुछ बात ऐसी होती है जो बताई नहीं जाती. और लुबी कहती है अस्सलाम वालेकुम सरोज जानी, क्या हाल है, मैं भी आपके साथ साथ नाइस हूं. थैंक यू सो मच हमारी प्यारी लुबी. जावेद अली रिंद हमें सुन रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम.

अनवर भाई यदि माशाल्लाह हिन पेज जा 10 के फॉलोवर थी वया ने नगे 10 साल थी वयो वदनी कोन था अला केडो मसलो द अच्छा इमरान अली अब्बास की मैं सुन रही हूं। वालेकुम अस्सलाम इमरान भाई, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं।

मोहम्मद समान भाउ तव्हां जेके टॉपिक वारो कॉमेंट हो मूंखे मिलियो ई कोन शायदि या मूं ॾिठो न हूंदो हुनखे वराए शेयर करे छॾियो तव्हां. सनाउला बिरोही भाई में सुन रहे हैं. वालेकुम असलाम अदी, ठीकु आहे? तव्हां ॿुधायो भाउ कीअं आहियो? मिठो सूमरो हमारे साथ है, मिस्त्री मिठो सूमरो फ्राम खानपुर महर से शो सुन रहे हैं, बहुत शुक्रिया जी. अच्छा एसन कहते वीचारे जी रोजी ते लतन डियो बियो कम नाए थिंदो इन का माशाल्लाह चो हकीकत आ मोके सिर्फ बकबक करण दिया बियो को कम ही नहींदो आ मोके सो किस्मत सा अगर बस समझी आउ ना. शाहनवाज अली खास के लिए में सुन रहे हैं. वालेकुम अस्सलाम अदा चाला ताजो खुश आयो प्रोग्राम ता के पसंद अच्छी पयो सो मोहब्बतू आ तवा जी. इमरान अली अबासी कहते हैं खुदा हर उस शख्स को सुकून दे जो अपनी हालत किसी को बता नहीं सकता. बिल्कुल तां भली गाल कही.

ईश्वर भाई त कुछ माण्हू सवायो कढ पइजी विया अलाए छो तोब वफ़ा शे ज़ादो मक्सीअ में सुन रहे हैं खुशामदीद भाई जान असांखे लाड़काने खां ज्वाइन कयो आहे सो मोहबतूं आहिनि और दर्दी दिल कहती है की हाय सिद्रा तीन शो होंगे तो एक शो 10 से 11 दूसरा 1 से 3 और तीसरा 5 से 6 दिन भर आप हमारे साथ रहेंगी हाँ हाँ बो कम कार को वो गानो जल्दी खत्म थी अच्छी चीजें जल्दी खत्म हो जाती है और ए मंसारी कहते हैं नफरत भी तुमसे क्यों करें इतना भी वास्ता क्यों रखना आईली मुझे भी यह सोच हूँ तो बस छड़े दिनों तो बस छड़े दिनों नफरत में छा कर फहीम कहते हैं असांजो वारो इंदो या न अज तमां गानो अड़ो चयो आ जेको असां थोड़ो न हलाए सकंदासीं।

अच्छा दर्दे दिल कहती है टॉपिक कोई हिस्सा नहीं, कौन कौन सा डिलीट करूंगी, ऐसे बहुत सारे सीन है भाई हमारी जिंदगी में, क्या बात है भाई क्या बात है। और उन्होंने अलावा अच्छा अन्या भी टाइम था वो पोस्ट के लाइक एंड शेयर करी बैठो।

क्या बात है जी, बहुत ही प्यारा गाना यहाँ पर आप इंजॉय कर रहे हैं और साथ साथ प्रोग्राम सुन रहे हैं. व्हाइट एश एंड डी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से. तो अगर अभी तक आप लोगों ने डी स्किन ब्यूटी क्रीम नहीं लगाई और डी स्किन फेस वॉश नहीं लगाया तो लगाइए ना, किस चीज का इंतजार कर रहे हैं. और डी स्किन ब्यूटी क्रीम अगर आपके एरिया में नहीं मिल रही, तव्हांजे ॻोठ में, तव्हांजे शहर में, तव्हांजे करीबी जनरल स्टोर से नथी मिले, त पोइ तव्हां डायल कयो 03-15-799-0595 ॿुड़ी 315-79-595. ओ इते रखेसि.

जान दर्दे दिल वरी तमाम सुभाने फरमाइश कजो ठीक आ और हमारे साथी जी हमारी फजीला सिंधी वालेकुम अस्सलाम आपको खुशामदीद कहते हैं तमाम जी शायरी जकाय ना हुआ मथे प्रोग्राम में पढूंगा ठीक आ सो थोड़ो इंतजार कजो अच्छा ये हमारे साथी गोठ उस्मान शर खान करीम बख्शर जैन अली शर शो तमा जो नाइस है प्लीज प्ले फौजिया सुमरू ओके भा तमा जी पसंद हलाने जी कोशिश कयूं था टाइम बची वयो था एरम कहती है दिलबर आप ही जवाब में अरीबा को डिलीट करूंगी इतना प्यार देती है जो मैं बर्दाश्त भी नहीं कर सकती हूँ आप भी जवाब दीजिएगा वैसे यो भी वाकई यो थींदो अगर को ज्यादा प्यार ईंदो आ न तो असा सोचींदा आहियूं असां जो मतलब नर्वस सिस्टम आ न थोरो नर्वस थी वेंदो ज्यादा प्यार भी असा के मतलब जो ना हजम ना थी सकन सो एड़ा मानू भी वाकई थोड़ो घट वणंदा है मतलब माँ वो मानू जो मतलब चवंदी आ लिमिट में हुए हर शे चाहे वो प्यार हुए नफरत हो जे हर शे लिमिट में हुए मौजूद है सिदरा जी अठहत्तर मोरी से मीरपुर खास अठहत्तर मोरी मीरपुर खास से राजा हमीचंद हैं किशोर कुमार हैं हीरा लाल हैं फौजी सवाई लाल गणेश चंद आज अच्छा गाना लिखा है आपने ठीक है बहुत शुक्रिया आप हमारे साथी भाइयों को वेलकम करते हैं और ये हमारे साथ है एस एच ओ खालिद अली नी खालिद आलम खान मोहम्मद खान आप दोनों भाइयों को वेलकम करते हैं और शोनी कहती है ओके बाय मैं जा रही हूँ ठीक है जी आप जाइए और हमारे साथ हैं जी मारिया भी हमारा शो सुन रही है मारिया आपको भी वेलकम करते हैं

में नगरी कहती है कि इश्क करने वाले लोग जान भी दे सकते हैं ऐसा मुझे लगता है, लेकिन देनी नहीं चाहिए, जिसके लिए देंगे ना वही इंसान समझ रहे अच्छा दर्दे दिल लगती है कि मानो खुश रहने जो दुआओं भी दींदा वरी खुश डिसी हसद भी कंदा इन्हें भला छो, यह हकीकत है दुनिया जी।

फहीम कैसी बातें कर रहे हैं। अच्छा एक लाख भाई कहते हैं ना गर्मी में हथ वारो पखो न ताणी सगो वरी क्रीम मानो दिसो ये जके आलसी मानो दा ना ये सफा कारा थी वेंदा वाला गर्मी जे एंड टाइम।

आप राजा नहीं है ना। हाँ राजा हटा दें आप, ठीक है। एसन के दे मतलब त हाँ बिल्कुल यह गाल थोड़ी अजीब लगंदी आहे। ए मंसारी केती असा नफरतन जा एतरा आदि थी वया आयो जो केर मुखलिसी सा पेश अचे त ड्रिज तो ते त अदाकारी द कोन पयो करे। बिल्कुल ये या ये या ये या सफा मुझे ओके जी साजिद हुसैन सुमरू हमारे साथ हैं। भाव वालेकुम अस्सलाम प्रोग्राम बुधो पिया आई तमा के बुधाईंदासी त बिल्कुल तमा जिला मार्केट में सा डी स्किन ब्यूटी क्रीम के अवेलेबल करायो आहे। आई डी स्किन ब्यूटी क्रीम अगर अन्य तई तमा इस्तेमाल कोन कया त अल्लाह तमा पान से डाडो जुल्म कयो पया। डी स्किन ब्यूटी क्रीम के इस्तेमाल कयो जी तमा सफा सोणा सोणा थी वणो आई गर्मी में भी तमा लगाए सगो था आई तमा सोणा थी सगो था। उनका अलावा फहीम केते सदरा एक गाल समझ में ना आई आखिर में अच्छा चवंदा आहे न मतलब हेतिरो ख़्याल रखो पंहिंजो हेतिरो मां ई चवंदी आहियां ओ हेॾो सारो ख़्याल रखंदो कयो पंहिंजो। सो बिल्कुल इहो चवण जो टाइम अची वियो आहे। तव्हां खां इजाज़त वठूं था वरी तव्हां सां मुलाकात जेका आहे मुंहिंजी थींदी पंजे बजे खां वठी छह बजे ताईं, ठीकु आहे। पंजे बजे खां छह बजे ताईं तव्हांखे वरी दुबारा ज्वाइन कयूं था। सो पंहिंजो ओ हेॾो सारो ख़्याल रखंदा किथे का ग़लती थी हुजे थोरो लव्स ॻाल्हाइजो जेको तव्हांखे सुठो न लॻो हुन लाइ माज़रत कयूं था। सो मोकिलाणी नाहे बाबू सिन सलामत सां सलामत अलाह हाफ़िज़ बाय लव यू ऑल एंड टेक केयर।

0: आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: It's 3:15 p.m.
1: This time check is brought to you by
2: White-ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
3: आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज.
4: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज GAFM 90.4.

0: एलोवेरा फैन
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियां, जिसके मिनरल्स स्किन में फॉली एब्जॉर्ब हो जाएं, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

0: सिंध के माथे का झूमर
1: GFM 88 नेटवर्क
0: सिंध की आवाज।
1: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4।

0: पाकिस्तान खिलाफ़ मोदी जी साज़िश नाकाम बणाईंदासीं, सिंधु जो पाणी रोकियो वियो त जंग कंदासीं, सिंतास मुआदे ठाह न कंदासीं। जीबीपी वॾे वज़ीर जे हलफ़बरदारी तक़रीब खे ख़िताब कंदे पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी चयो त पाक फ़ौज जंग में भारत खे इबरतनाक शिकस्त ॾिनी, भारत खां शिकस्त हज़म न थी रही आहे। भारत हाणे इसराइल बाड़ अख़्तियार कयो आहे। मोदी अफ़ग़ानिस्तान ज़रिए पाकिस्तान में मुदाख़लत करणु चाहे थो। पाकिस्तान जी अवाम मुतहद आहे, दुश्मन जो हर साज़िश नाकाम कंदो। जीबी में अवाम सां कयल वाइदा भाणींदासीं, समूरनि जमायतुनि सां गॾिजी कम कंदासीं। ईरान जे शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खमेनी जो आख़िरी रस्म जारी, मढ़ खे जलूस सूरत में मुसला मस्जिद खां क़ौम मुंतक़िल करण वारो सफ़र जारी। मढ़ खे लखे सोग वारनि पारां अलविदा कयो पियो वञे। जलूस बाद शहीद आयतुल्लाह खमेनी जो मढ़ क़ौम मुंतक़िल कयो वेंदो। ईरानी सदर मसूद पज़ेशचान चयो आहे त शहीद राबर सेखारे छॾियो त ईरान जो अज़ीम सरमायो अवाम ऐं इतिहाद आहे। असां ईरान जी इज़त तरक़ी ऐं अज़मत वारे रस्ते ते हलंदा रहंदासीं। ईरान सामन ॻाल्हियूं खमेनी जी आख़िरी रस्मनि ताईं मअतल रहंदियूं, अमरीकी सदर ट्रंप चयो आहे। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट सां ॻाल्हाईंदे ट्रंप चयो त ईरान जूं समूरियूं आला शख़्सियतूं जनाज़े में मौजूद आहिनि, चाहियूं था त खेन ख़तमु करे सघूं था, पर असां ईअं न कंदासीं, पोइ ॻाल्हियुनि लाइ केरु बचंदो। हमास गज़ा में ॿिनि ॾहाकनि खां हुकूमत कंदड़ पार्टी टोड़े छॾी, गज़ा जो कंट्रोल फलस्तीन जे आर्टिक्रेट कमेटी हवाले करण जो रस्तो हमवार। हमास जे फैसले जी फलस्तीनी ग्रुप्स पारां आज़ी आहे। हमास चयो त गज़ा ते हुकूमत कंदड़ पार्टी खे टोड़ियो वियो आहे। हुकूमत सीड़पकारनि खे हर मुमकिन सहूलियतूं ॾियण लाइ पुरज़म आहे। इन्वेस्ट पार्क पॉडो जो मक़सदु परॾेही सीड़पकारीअ खे हथी ॾियणु आहे। नाड़े वारे वफ़ाक़ी वज़ीर मोहम्मद औरंगज़ेब चयो आहे पाकिस्तान में सड़पकारीअ जा घणा मौक़ा मौजूद आहिनि, इन्वेस्ट पार्क पोर्टल सां सड़पकारनि लाइ आसानी पैदा थींदी। वॾे वज़ीर मुराद अली शाह सां इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन जे पाकिस्तान में मुख्य डायरेक्टर जी मुलाक़ात। सिंध में आलमी डेटा सेंटर जे क़याम मुतबादल एनर्जी वारनि ज़रियनि ते ॻाल्हियूं। वॾे वज़ीर मुराद अली शाह चयो त नंढनि आबादगारनि खे ग्रुप जी सूरत में सब्सिडी वारा ट्रैक्टर फराहम कया वेंदा, आबादगार जी तरबियत बि ज़रूरी आहे। गिलगित बल्तिस्तान जे वॾे वज़ीर एडवोकेट अमजद हुसैन उहिदे जो हलफ़ खणी वरितो। गवर्नर महदी शाह अमजद हुसैन खे उहिदे जो हलफ़ खणायो। पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी बि तक़रीब में शरीक थियो। जीबी जे वॾे वज़ीर अमजद हुसैन चयो त गिलगित बल्तिस्तान जा मसला हल करण पहिरीं तरजीह हूंदी। इस्लामाबाद में पाक फिज़ाया जे ग्रुप कैप्टन आसम तारिक खे शहीद करण जवाबदार जा सीसीटीवी फुटेज साम्हूं अची विया। जवाबदार खे कैप्टन आसम तारिक खे शहीद करण बाद दुकान तां नई शर्ट वठी तब्दील कंदे ॾिसी सघिजे थो। जवाबदार गुज़िरियल ॾींहुं पाक फिज़ाया जे ग्रुप कैप्टन खे शहीद कयो हो। लाहौर में ॿिनि परॾेही औरतुनि जे अगवा ऐं ज़्यादती वारे केस में अहम अख़बार आई। परॾेही औरतुनि सां इज्तमाही ज़्यादती जी तस्दीक थी वई। टिनि जवाबदारनि जा डीएनए मैच थी विया। पुलिस ज़रियुनि मूजिबि जवाबदार नवाज़ साजिद ऐं सिकंदर जा जुज़ा मैच थी विया आहिनि। जवाबदार नवाज़ सभ खां पहिरियां औरतुनि सां ज़्यादती कई। अठ जवाबदारनि जा डीएनए सैम्पल वरिता विया आहिनि। लखी गुलाम शाह वर्सां जतोई ऐं महरधुरियुनि में ॿीहर तकरार बाद पुलिस जो ऑपरेशन मुबैना तौर ते मार्टर गोला लॻण सबबि ॿ नींगर मारिजी विया। पुलिस चयो आहे त धुरियुनि में तकरार बाद ऑपरेशन कयो पियो वञे। पंज जवाबदार गिरफ़्तार कया आहिनि। कोठड़नि चयो त ॿई नींगर पुलिस जा मार्टर गोला लॻण सबबि मारिजी विया आहिनि। सिंध में पाणी कोट संगीन थी वई। आबादगारनि जा मुख़्तलिफ़ शहरनि में मुज़ाहिरा। घोटकी में आबादगारनि जो पाणी कोट ख़िलाफ़ एहतजाज। टिकराटो में बि आबादगारनि पाणी कोट ख़िलाफ़ मुज़ाहिरो कयो। टणो बागो में बि आबादगारनि पाणी कोट ख़िलाफ़ एहतजाज कयो। कंदकोट में मुराद शाह जे आबादगारनि पाणी कोट ख़िलाफ़ इंडस हाईवे ते धरणो हयो। कानपुर महर में बि मुख़्तलिफ़ वाहन में पाणी कोट ख़िलाफ़ आबादगारनि धरणो हयो। पुछड़ ताईं पाणी पहुचाइण जो मुतालबो। खैरपुर शहर मां गुज़रंदड़ मीरवा किनाल मां नामालूम शख़्स जो लाश शहर इलाइक़े वासनि लाश ॾिसी पुलिस खे इतलाउ कयो। पुलिस पहुची लाश अस्पताल मुंतकिल कयो। कनकोट में रिसालदार शाही वाह में ॿुड़ी पहुतल ॿार जो लाश शहर ते मकाई माण्हुनि खे घेटो शाख मां ॿार जो लाश मिलियो। चंडोलयार में हथकड़ियूं हटाइण तां इंतज़ामिया ऐं दुकानदारनि में छिकताण। दुकानदारनि जूं पुलिस सां चकरियूं। पुलिस जी लठबाज़ी। कुझु दुकानदार गिरफ़्तार। इंतज़ामिया मूजिबि अदालती हुकुम ते हथकड़ियूं हटाए रहिया आहियूं। दुकानदारनि चयो आहे पुलिस ज़्यादती करे रही आहे। दादू में पीअण जे साफ़ पाणीअ खां महरूम टीहनि ॻोठनि जे रवासनि जो प्यादल मार्च धरणो। मुतासिर ॻोठनि प्यादल मार्च करण बाद डीसी ऑफिस वारो धरणो हयो। ॻोठाणनि जो चवणो त केतिरनि सालनि खां इलाइक़े में साफ़ पाणी फराहम न थी रहियो आहे। मुतासिर ॻोठनि खे पाणी फराहम न थियो त तहरीक हलाई वेंदी। ठठो वेझो दाबजी वटि मंदचाल सां मिलियल कार ड्राइवर जे कंट्रोल मां निकिरी कल्टी, ॿ ॼणा फोत। तेज़ रफ़्तार कार मुसाफ़िर वेन सां टकराइण बाद कल्टी थी पई, ॿ ॼणा फोत ऐं 5 ॼणा ज़ख़्मी थिया। पुलिस पहुची लाश ऐं ज़ख़्मीनि खे अस्पताल मुंतकिल कयो, मंदचाल तेवील में वरिती वई। फुटबॉल वर्ल्ड कप जे प्री क्वार्टर फाइनल जारी, 5 भेरा फुटबॉल जे आलमी चैम्पियन रहंदड़ ब्राज़ील जी टीम इवेंट खां ॿाहिरि थी वई। नॉर्वे ब्राज़ील खे 1-1 मुक़ाबले में 2 गोलनि तां शिकस्त ॾेई इवेंट खां ॿाहिरि करे छॾियो। इंग्लैंड दिलचस्प मुक़ाबले बाद मेक्सिको खे 2 मुक़ाबले में 3 गोलनि तां शिकस्त ॾिनी। क्वार्टर फाइनल में इंग्लैंड जो मुक़ाबलो नॉर्वे सां थींदो। कैनेडा, मेक्सिको ऐं ब्राज़ील शिकस्त बाद इवेंट खां ॿाहिरि थी चुकियूं आहिनि।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: छावा पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो
4: तपोए GAFM 90.4 मातली बदीन एक एड़ो FM रेडियो आए
3: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल
4: ऐं हाँ गोठन शहरन ऐं परे परे ताई बुधो वींदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
3: बस पो हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
4: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
3: 0331252578 6।
4: जी हाँ, 2315525786
3: GAFM रेडियो नेटवर्क,
4: सिंध जो आवाज़।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज, GFM 90.4।

0: बुलेटिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन जीएफएम बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।

अपना शहर अपना घर माथली और माथली की आवाज़ GFM 90.4।

0: अपना शहर अपना घर माटली और माटली की आवाज GFM 90.4।
1: ओ सदका

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
0: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
1: सुनते रहो GFM 90.4।

हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: It's 5:15 PM.
1: This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream. Asli glow har niya josho. A product by Biocon International Pakistan.
3: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवां दवां, यह है मोहब्बत और यकजहती का पैगाम यहां वहां। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
4: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज, GFM 90.4।

आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: आप सुन रहे हैं
1: DAFM 88
0: नेटवर्क।

0: जिंदगी आवाज मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
1: सुनते रहो GFM 90.4।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज, GAFM 90.4।

0: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: सिंध के माथे का झूमर
1: DFM 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज। मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
1: सुनते रहो GFM 90.4।

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: पाकिस्तान खिलाफ मोदी की साजिश नाकाम बणाईंदासीं, सिंधुअ जो पानी रोके वियो त जंग थींदी, सिंतास मुआहदे ते कॾहिं बिठाउ न कंदासीं। गिलगित बल्तिस्तान में वॾे वज़ीर जे हलफ बरदारी तकरीब खे ख़िताब कंदे पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो चयो त पाक फ़ौज जंग में भारत खे बर्तनाक शिकस्त ॾिनी। भारत खां शिकस्त हज़म न थी रही आहे, भारत हाणे इसराइली मॉडल अख़्तियार कयो। मोदी अफ़गानिस्तान ज़रिए पाकिस्तान में मुदाख़लत करणु चाहे थो। पाकिस्तान जो अवाम मुतहद आहे, दुश्मन जी हर साज़िश नाकाम कंदो। गिलगित बल्तिस्तान में अवाम सां कयल वाइदा पाड़ींदासीं, समूरनि जमायतुनि सां गॾिजी कम कंदासीं।

0: कम करे सघूं था पर असां इएं न कंदासीं पोइ ॻाल्हियुनि लाइ केर बि न बचंदो। डेवोल्यूशन बाबति सेनेट जे फंक्शनल कमेटीअ जो इजलास 16 सालनि खां सूबाई कोटा ते अमल न थियण जो इंकशाफ़। 4 सूबनि में 4.5 लख नौकरियुनि ते वफ़ाक पारां कोटा ते अमल न करण जी तस्दीक। सिंध जूं 1 लख नौकरियूं बि शामिल। कमेटी तरफ़ां 1 खां 16 ग्रेड जी नौकरियुनि ते फौरी अमल करे रिपोर्ट ॾियण जो हुकुम। कमेटी जे कन्वीनर सेनेटर ज़मीर घुमरो जो चवण हो त सिंध जे 1 लख नौकरियुनि समेत 4 सूबनि जूं 4.5 लख आसामियूं वफ़ाकी इदारनि में खाली पयल आहिनि। आइन रोज़गार जी ज़मानत ॾिए थो। पार्लियामेंट फंड बि ॾिना आहिनि, कोई बि रोज़गार न पियो ॾिनो वञे। सिंध खे 19% मिलंदड़ सूबाई कोटा हाणे आबादी जी बुनियाद ते 23% थी वई आहे। सिंध जे वॾे वज़ीर सैद मुराद अली शाह सां इंटरनेशनल फिनांस कार्पोरेशन जी पाकिस्तान में मुक़रर डायरेक्टर जी मुलाक़ात। सिंध में आलमी डेटा सेंटर्स जी क़याम ऐं मुतबादल एनर्जी वारनि ज़रियनि ते ॻाल्हियूं। वॾे वज़ीर मुराद अली शाह चयो आहे त नंढनि आबादगारनि खे ग्रुप जी सूरत में सब्सिडी वारा ट्रैक्टर फराहम कया वेंदा। आबादगारनि जी तरबियत पे ज़रूरी आहे। गिलगित बल्तिस्तान जे वॾे वज़ीर एडवोकेट अमजद हुसैन उहिदे जो हलफ़ खणी वरितो। गवर्नर मेहंदी शाह अमजद हुसैन खे उहिदे जो हलफ़ खणायो। पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो बि तकरीब में शरीक थियो। गिलगित बल्तिस्तान जे वॾे वज़ीर अमजद हुसैन चयो त गिलगित बल्तिस्तान जा मसला हल करणु पहिरीं तरजीह हूंदी। हुकूमत मालिक जी मंज़ूरीअ बिना बि ज़बरदस्ती मिल्कत वठी सघे थी। रियासत अवामी मफ़ाद में ज़मीन हासिल करे सघे थी पर मुनासिब मुआवज़ो ॾियणो पवंदो। सुप्रीम कोर्ट जो फ़ैसिलो। सुप्रीम कोर्ट मिल्कियतुनि बाबति अपीलनि ते फ़ैसिलो जारी कंदे चयो आहे त अवामी मफ़ाद लाइ ज़मीन हासिल करणु रियासत जो अख़्तियार आहे। हुकूमत मालिक जी मर्ज़ीअ बिना बि ज़बरदस्ती मिल्कियत वठी सघे थी पर इहो अख़्तियार लामहदूद न आहे। मालिक खे सोन जे बदिरां सोन ॾिनो वञे, चांदी न। ज़मीन जी क़ीमत बि सरकारी रेट न पर मार्केट वैल्यू ऐं इस्तेमाल वारे मक़सद तहत थियणु घुर्जे। शहरीअ खे क़ानून ते अमल करणु बिना मिल्कियत खां महरूम नथो करे सघिजे। इस्लामाबाद में पाक फिज़ाया जी ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक खे शहीद कंदड़ जवाबदार अदालत में पेश। अदालत जवाबदार खे सुञाणप परेड लाइ जेल मोकिले छॾियो। जवाबदार जी गिरफ़्तारीअ वारा CCTV फुटेजिस बि साम्हूं अची विया। जवाबदार गुज़िरियल ॾींहुं पाक फिज़ाया जे ग्रुप कैप्टन खे शहीद कयो हो।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज़।

0: पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो
1: त पोइ जीए एफ एम 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो एफ एम रेडियो आहे
0: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल
1: ऐं हा ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो जीए एफ एम मातली बदीन।
0: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
1: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा
0: 0331252576।
1: जी हा 2315525786।
0: जीए एफ एम रेडियो नेटवर्क
1: सिंध जो आवाज़।

अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
0: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
1: सुनते रहो GFM 90.4।

हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: के हो तो आवाज भी सिंह की है। GFM 88 नेटवर्क सिंह की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।
2: आओ सब्जी वालों, ताजी सब्जी खाओ, अदा गोश्त मुहागो, मुर्गी मुहागी, मच्छी मुहागी, ताजी सब्जी खाओ, सेहत बढ़ाओ। आओ सब्जी वालों।

0: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवा दवा, यह है मोहब्बत यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: अपना शहर, अपना घर, माटली और माटली की आवाज़, GFM 90.4।

आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, माटली और माटली की आवाज GFM 90.4।

0: आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
1: सुनते रहो GAFM 90.4।

0: पाकिस्तान खिलाफ मोदी की साजिश नाकाम बणाईंदासीं सिंधु जो पानी रोके हुयो त जंग थींदी सिंतास मुआहदे ते कॾहिं बिठाह न कंदासीं गिलगित बल्तिस्तान में वॾे वज़ीर जे हलफ़ बरदारी तकरीब खे ख़िताब कंदे पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो चयो त पाक फ़ौज जंग में भारत खे बर्तनाक शिकस्त डि॒नी भारत खां शिकस्त हज़म न थी रही आहे भारत हाणे इसराइली मॉडल अख़्तियार कयो मोदी अफ़ग़ानिस्तान ज़रिए पाकिस्तान में मुदाख़लत करणु चाहे थो पाकिस्तान जो अवाम मुतहद आहे दुश्मन जी हर साज़िश नाकाम कंदो गिलगित बल्तिस्तान में अवाम सां कयल वाइदा पाणींदासीं समूरनि जमातनि सां गॾिजी कम कंदासीं वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ जी सदारत हेठि नौजवाननि जे रोज़गार बाबति अहम इजलास वज़ीर आज़म जी प्रोटेक्ट्रेट ऑफ इमिग्रेशन वारे निज़ाम खे डिजिटलाइज़ करण जी हिदायत शहबाज़ शरीफ़ चयो त पाकिस्तान जी अफ़रादी क़ुवत बासलाहियत आहे नौजवाननि जी रोज़गार ऐं हुनरी सिख्या लाइ ज़रूरी क़दम खया वञनि ऐं हमास 20 सालनि बाद गज़ा जी हुकूमत खां धार थी वई गज़ा जो इंतज़ाम संभालींदड़ बॉडी टोड़ण जो बि ऐलान हमास जे तर्जुमान चयो आहे त गज़ा जो इंतज़ाम संभालींदड़ सिविल बॉडीअ खे टोड़े छॾियो आहे सिविल इंतज़ामिया खे ख़तम करण जो मक़सदु हथियार फिटा करणु न आहे गज़ा जो इंतज़ाम अवामी सतह ते क़बूलियत जोॻे शख़्स हवाले कयो वेंदो
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
2: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज
3: तव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो
4: त पोए GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
3: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल
4: ऐं हा ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन
3: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
4: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा
3: 0331252576
4: जी हा 2315525786
3: GAFM रेडियो नेटवर्क
4: सिंध जो आवाज़

दोपहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: के हो तो आवाज भी सिंह की है। GFM 88 नेटवर्क सिंह की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।
2: आओ सब्जी वालों, ताजी सब्जी खाओ, अदा गोश्त महंगो, मुर्गी महंगी, मच्छी महंगी, ताजू सब्जी खाओ, सेहत बढ़ाओ।

आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
1: सुनते रहो GFM 90.4।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GAFM 90.4।

0: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: सिंध के माथे का झूमर
1: GFM 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज। मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
1: सुनते रहो GFM 90.4।

अपना शहर अपना घर माथली और माथली की आवाज़ GFM 90.4।

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: गुरु पंज हमलन की रिथाबंदी करने गणती जाहिर, कोर कमांडर्स खिते में अमुन अफगान तालिबान के असर हेठ जमीन से भारतीय प्रॉक्सीज के रोकण से मशरूद है। शहीदन जो कुर्बानियों पाकिस्तान की सलामती इतिहाद ए मजबूती जो बुनियाद रहंद, दहशतगर्दन खिलाफ बे कार्रवाई जारी रहंद। मोदी बुधी छद, सिंतास मुआदे से ठा न कंदासी, सिंधु दरिया जो दिफा कंदासी, जंग विड़नी पई त विड़ी डेखारींदासी, तुझे हर साजिश नाकाम बणाईंदासी ए कामयाब असी थींदासी। गिलगित बल्तिस्तान में वडे वजीर की हलफ बरदारी तकरीब के खिताब कंदे पीपी चेयरमैन चयो तो पाक फौज जंग में भारत के बर्तनाक शिकस्त डिनी, भारत का शिकस्त हजम न थी रही है, भारत हाने इसराइली मॉडल अख्तियार कयो, मोदी अफगानिस्तान जरिए पाकिस्तान में मुदाखलत करना चाहे तो, पाकिस्तान जो अवाम मुतहद है, दुश्मन की हर साजिश नाकाम कंदो। गिलगित बल्तिस्तान में अवाम से कल वायदा पाणींदासी, समूरन जमातन से गडजी कम कंदासी। वजीर आजम शहबाज शरीफ की सदारत हेठ नौजवानों के रोजगार बाबत अहम इजलास, वजीर आजम के प्रोटेक्ट्रेट ऑफ इमिग्रेशन वाले निजाम के डिजिटलाइज करने की हिदायत। शहबाज शरीफ चयो तो पाकिस्तान की फरादी कुवत बासलाहियत है, नौजवानों के रोजगार ए हुनरी सिख्या लाए जरूरी कदम खया वन। हमास 20 सालन बाद गजा की हुकूमत का धार थी वही, गजा जो इंतजाम संभालींदड़ बाडी टोड़न जो ऐलान। हमास के तर्जुमान है तो गजा जो इंतजाम संभालींदड़ सिविल बाडी के टोड़े छो है, सिविल इंतजामिया के खत्म करने जो मकसद हथियार फिटा करण ना है। गजा जो इंतजाम अवामी सतह से कबूलियत जोगे सवाल कर। ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई जो आखिरी रस्मू जारी, मड़ के जलूस की सूरत में मसला मस्जिद का कुम मुंतकिल करने वालों सफर जारी, लखें सोगवारन पारा अमेरिका ए इसराइल का कत्ल जो पलांद वठण जो मुतालबो। जलूस बाद शहीद आयतुल्लाह अली खामनेई जो मड़ कुम मुंतकिल कयो वेंदो। ईरानी सदर मसूद पशकियान चयो है तो शहीद रहबर सेखारे छो तो ईरान जो अजीम सरमायो अवाम ए इतिहाद है, असा ईरान की इज्जत तरक्की ए अजमत वाले रस्ते से हलंदा रहा। ईरान सा मामला बेहतरीन अंदाज में अगते वधी रहा है, अमेरिकी फौज अस्करी मैदान में ईरान के शिकस्त डिनी, तेहरान कदें भी एटमी हथियार ठाहे न सकंदो। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप चयो तो अमेरिकी फौज वेंसवेला में बेहतरीन कारकर्दगी डेखारी, हाने भी दुनिया की बेहतरीन फौज है। डिवोल्यूशन बाबत सेनेट के फंक्शनल कमेटी जो अहम इजलास, 16 साल का सूबाई कोटा से अमल न थियण जो इंकशाफ, चैनी सूबन में पौना 3 लख नौकरियों से वफाक पारा कोटा से अमल न करण की तस्दीक, सिंध जो 1 लख नौकरियों भी शामिल, कमेटी तरफा 1-16 ग्रेड की नौकरियों से फौरी अमल कर रिपोर्ट देने का हुक्म। कमेटी के कन्वेनर सेनेटर जमीर घुमरो जो चवण हो तो सिंध के 1 लख नौकरियों समेत चैनी सूबन जो पौना 3 लख आसामी वफाकी इदारों में खाली पयल आन, आइन रोजगार की जमानत दे तो, पार्लियामेंट फंड भी डिना कोई भी रोजगार न पो डो वे। सिंध के 19% मिलंदड़ सूबाई कोटा हाने आबादी की बुनियाद से 23% थी वही है। वडे वजीर सैयद मुराद अली शाह से इंटरनेशनल फाइनेंस कारपोरेशन के पाकिस्तान में मुकर्रर डायरेक्टर की मुलाकात। सिंध में आलमी डेटा सेंटर्स की क्याम ए मुतबादल एनर्जी वारन जरियन ते गालियों। वडे वजीर चयो तो नंढन आबादगारन के ग्रुप की सूरत में सब्सिडी वारा ट्रैक्टर फराम कया वेंदा, आबादगारन की तरबियत भी जरूरी है। गिलगित बल्तिस्तान के वडे वजीर एडवोकेट अमजद हुसैन उहदे जो हलफ खणी वरतो, गवर्नर मेहंदी शाह अमजद हुसैन के उहदे जो हलफ खणायो, पीपुल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी भी तकरीब में शरीक थियो। गिलगित बल्तिस्तान के वडे वजीर अमजद हुसैन चयो तो गिलगित बल्तिस्तान जा मसला हल करण पहिरीं तरजीह हूंदी। हुकूमत मालिक की मंजूरी बिना भी जबरदस्ती मिल्कियत वठी सके थी, रियासत अवामी मफाद में जमीन हासिल कर सके थी पर मुनासिब मुआवजो डो पौ। सुप्रीम कोर्ट जो फैसलो, सुप्रीम कोर्ट मिल्कियत बाबत अपीलन से फैसलो जारी कंदे चयो तो अवामी मफाद लाए जमीन हासिल करण रियासत जो अख्तियार है, हुकूमत मालिक की मर्जी बिना भी जबरदस्ती मिल्कियत वठी सके थी पर यह अख्तियार लामहदूद ना है। मालिक खे सोन जे बदिरां सोन ॾिनो वञे चांदी न ज़मीन जी क़ीमत बि सरकारी रेट न पर मार्केट वैल्यू ऐं इस्तेमाल वारे मक़सद तहत तय थियणु घुर्जे शहरीअ खे कानून ते अमल करण बिना मिल्कियत खां महरूम नथो करे सघिजे इस्लामाबाद में पाक फिज़ाया जे ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक खे शहीद कंदड़ जवाबदार अदालत में पेश अदालत जवाबदार खे सुञाणप परेड लाइ जेल मोकिले छॾियो जवाबदार जी गिरफ़्तारी वारा सीसीटीवी फुटेज बि साम्हूं अची विया जवाबदार गुज़िरियल ॾींहुं पाक फिज़ाया जे ग्रुप कैप्टन खे शहीद कयो हो

0: छावां पंहिंजे कारोबार जी तरक्की लाइ सोचे रहिया आहियो
1: त पोइ GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
0: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल
1: ऐं हा ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
0: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
1: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा
0: 0331252576।
1: जी हा 2315525786
0: GAFM रेडियो नेटवर्क
1: सिंध जो आवाज़।

0: It's 8:15 p.m.
1: This time check is brought to you by
2: The Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
3: अजरक के रंगों से रंगी,
4: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
5: सिंध के दिल से निकली आवाज,
4: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
4: सुनते रहो GFM 90.4।

हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: अब आपकी खूबसूरती का फैन 5H ब्यूटी क्रीम।

0: वाइट एच ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
1: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

0: रखे हो तो आवाज भी सिंक की है। GFM 88 नेटवर्क सिंक की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवां दवां, यह है मोहब्बतो यकजहती का पैगाम यहां वहां। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज, GFM 90.4।

आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
1: सुनते रहो GAFM 90.4।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। अपना अपना घर मातली और मातली की आवाज़ GAFM 90.4।

0: सिंध के माथे का झूमर
1: GFM 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज। मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
1: सुनते रहो GFM 90.4।

अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4।

अपना शहर अपना घर माटली और माटली की आवाज़ GFM 90.4।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा, कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
0: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
1: सुनते रहो GFM 90.4।

0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवा दवा, यह है मोहब्बत और यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
1: सुनते रहो GFM 90.4।